अजल वही हैं बारु बादू ये तखुतुनते हैं हबरु दनी हैं मगे मूनु गलकुनु लेवे हैं जखमु वनी हैं।

0: मी मरियम रिफ्का रशीद, रिफ्का गार्ड, दिवे ही एफएम, दिवे ही नाइक, दिवे ही नाइक।
1: नोदी है 1 मेगाहर्ट्ज़, दिवे ही एफएम।
2: लावे कफ़ा हो, लावे

0: कैसे तेरा
1: जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: नुआ दी है के मेगाहर्ट्स दी वे ही एफएम ईशान अमादो वागुतु
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: नहीं गोता कल सा
1: हिगेम वर रीत इंगे कोंदा बेंगे हैं भी मैं समाज हाल दे भी
0: समाज हम भी हम जमीला सलीम के हम रंग लवाई
1: हिगेम रीत लवे तो
0: हिगेम रीत लवे जहली में उन्ना ने हम रंग लवे तो
1: जहाँ दे ना हिगेम रीत लवे इंगे कौन कुछ जगह हाँ सा कोल्ला भी
0: हाँ सा कोल्ला ने हमें बोलते हैं मैं समाज दें या इससे मुझे टीम आ तो के टीम आ इधर नमो ना कंप्रेस टीम के हम हुरी हाँ एमएन ना
1: एनीमोनी ओके लव जहाँ इंगे वारा बड़े शुक्रिया वाकी वेला ना बाज वेरिया खाए दे मरिया
0: हाँ वारा बड़ा शुक्रिया।

0: ನವ ಎಂಬೆ ಫುರತಮ ಕಿಯಾಫವನಿ ನವಾರ್ಸ್ತೇಕೆ ಹದ್ದಿಹ ನುವವ ನಾಹರು ನುಸ್ರತ್ ಫಾತಿಹಾಲಿ ಖಾನ್ ಫುರತಮ ಫಹರಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕುರಿ ದತುರುಗ ಮಿ ದತುರಕಿ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ಗೆ ದೌವತಕ ರಿಷಿ ಕಪೂರ ನೀತು ಸಿಂಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾವೆನಿಗೆ ಹಫ್ಲಾಗ ಬ್ಯಾವಿರುವ ಕುರಿ ದತುರೆ ಎಂಬೆ ಫುರತಮ ಮಿ ಲವ ಕಿಯಾಫವಣಿ ಮಿ ಹಫ್ಲಾಗ ಲವೇಕವರ ಬೊಡ ಮಿ ಕವಾಲಿಯೆ
1: समझते हैं कि इस गाने को मीरा बाई ने लिखा है शायद इसलिए क्योंकि इस गाने का जो टोन है वो एक भक्ति का टोन है और अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देने वाला टोन है जो कि मेनली मीरा बाई का राइटिंग स्टाइल था बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस गाने को लिखा है एक पाकिस्तानी पोएट और लिरिसिस्ट ने जिनका नाम था तुफैल होशियारपुरी और इसको कंपोज किया है नन अदर देन नुसरत फतेह अली खान ने उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि नुसरत जी ने पहली बार इस कव्वाली की पब्लिक लाइव परफॉर्मेंस दी थी ऋषि कपूर और नीतू कपूर के संगीत पे वो पहली बार इंडिया आए थे इस ओकेजन पे राज कपूर जी ने उनको इनवाइट किया था अपने बेटे की शादी में और उन्होंने इस ओकेजन को चूज किया इस कव्वाली को पहली बार परफॉर्म करने के लिए एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पे ऑडियंस कितनी

0: कवर वर्जन तो लाखों आपको YouTube पे मिल जाएंगे। नुसरत जी के जो नेफ्यू हैं राहत फतेह अली खान, इन्होंने भी इसका एक कवर वर्जन किया है एज अ ट्रिब्यूट टू हिज अंकल।
1: मी लवा के कवर वर्जन तवारा किना एगोतुंग एम ए फाहक कोल्लेवे एक कवाय की राहत फतेह अली खान के वर्जन।

0: Mi lavayaki durandar da revenge mi film ka himene ustaz Nusrat Fateh Ali Khan ke classical qawwali dil pe zakham ke machabina kon hada fawa cinematic lavay mi lavayaki durandar the revenge ke magand ellawa lavayaki war baruga da music ka ekuga dramatic kotaka genis difa walave mi film ki mi harge march mohga release kuri filme ಮೀದೆ ಹಾಸ್ ಫನ್ಸವಿಸ್ ವನಹರ್ ಗೆನೆಸ್ತಿನ್ ದೂರಂತರ್ಗೆ ದೇವಣ ಬೇ ಫಿಲ್ಮ ಕಿ ಮಶೂರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದಿ ಬತಲಾ ಯಮಿ ಗೋತಂಗೆ ಫಿರ್ಮಿ ಹಾ ಆದಿತ್ಯ ದಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋ ಗೆನೆಸ್ತಿನ್ ಫಿಲ್ಮೆ ಗ್ಯಾಗನಕಂ ಹತರು ಗಟಿರುಗೆ ಮಿ ಫಿಲ್ಮು ಫೆನಿಕೆಂದನಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ಪಲ್ ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಅದಿ ಸಾರ್ ಅರ್ಜುನ್
1: दस साल पहले ही मैंने ये कुछ सब कुछ देख लिया था और देखता भी आ रहा हूँ और मुझे अभी ये लग रहा है कि हाँ एक और गाना हिट हो गया है सुपर डुपर हिट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह का तो ये मैं बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची में जो एक चीज़ है क्योंकि वो नॉर्मल गाना नहीं है ना वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की कॉम्पोजिशन है तो इसी वजह से भी वो नॉर्मल नहीं है ये नहीं है कि मैंने गाया है तो इसीलिए नॉर्मल नहीं है लेकिन वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया हुआ है और कॉम्पोजिशन भी उनकी है तो इस वजह से बहुत माशाल्लाह मुझे ये मैं प्राउड भी फील करता हूँ कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना मुझे मिला है बॉलीवुड में मेरी एंट्री हुई है तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने से हुई है